सीनी यहाँ पे वक्त भी नहीं है, मौका भी नहीं है। बोनवा ने लीडर बना के छोड़ दें, बोनवा ने लीडर उनकी जिम्मेदारी, यानी कोई जुजी मसला नहीं है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। इसलाह समझना, फसाद समझना, इसलाह को अपना लेना, फसाद से बच जाना, ये हर एक के बस की बात नहीं। शरीयत तो पूरी आ चुकी थी, लीडरशिप के पीछे जो एक बहुत बड़ा फलसफा और मकसद है वो यही है। क्योंकि इंसान आम निगाहों में जो लोग मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे और मुकाबिल के लश्कर में थे, तो वो क्या समझते थे? यही तो समझते थे कि हम इस्लाह पे हैं और नौज़ बिल्ला मौलाए कायनात फसाद। तो तकवे की जो तकवे से सलाहियत, अलबत्ता अगला पॉइंट जो हम अर्ज करने जा रहे थे लेकिन वक्त नहीं है लिहाजा इशारा करेंगे सिर्फ, तकवे से जो इंसान के अंदर सलाहियत पैदा होती है वो ये पैदा होती है कि इंसान हक और बातिल के फ़र्क को पहचानने लगता है, निगाहों में बसीरत आ जाती है। दुश्मन ने यह काम किया, यह काम ओरिएंटलिज्म का है कि तकवे के मुकाबले में डुप्लीकेट तकवा ला के रख दिया। ज़ाहिर सी बात है कि डुप्लीकेट तकवा ओरिजिनल तकवे वाला काम तो नहीं करेगा। अगर ये माइक डुप्लीकेट आ जाए तो आवाज़ थोड़ी जाएगी, बा ओरिजिनल माइक होगा तो वही तो कैच करेगा ना आवाज़ का, डुप्लीकेट तो वो काम नहीं करता। लिहाजा ठीक है, कुरान कह रहा है तकवा अपनाओ ये होगा, तकवा अपनाओ ये होगा, तकवा अपनाओ ये होगा, पहले ये तो तय हो तकवा है क्या, कहते किसको, उसके बाद इंसान उस कमाल तक पहुंचेगा। लिहाजा तकवा अपनाना तो जिम्मेदारी है ही हमारी, तकवे को ये पहचानना और समझना भी हमारी जिम्मेदारी है, और फिर यहाँ पे आके उसी लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अपनी अपनी मर्जी से तो हर आदमी के अलग दीन होता है, हर आदमी का अलग तकवा होता है, हर आदमी के अलग अहकाम होते हैं, हर आदमी की अपनी अलग समझ होती है। फिर इंसान जाएगा वो इस मकाम पे जाएगा कि जहाँ पे हकीकत को पहचान सके। लिहाजा तकवे के जो असरात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन असल तकवा पहचानना भी हमारी जिम्मेदारियों में से। आइए इसके बाद अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलातु वस्सलाम के कलमे क़िसार पे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं मुसलसल। अब तक इस कलमे में जो मौला फरमा चुके हैं कि अल्लाह ने तुम पे ईमान को इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि तुम्हें शिर्क से पाक कर सके, नमाज इसलिए की तकब्बुर से बचा सके, ज़कात को रिस्क का सबब बनाया, रोज़े को तुम्हारे इखलास के इम्तिहान के लिए रखा, हज को दीन की तक़वियत के लिए। आज से जो गुफ्तगू शुरू हो रही है वल जिहाद इज़्ज़त लिल इस्लाम, और जिहाद को इस्लाम की इज्जत के लिए करार दिया, इज्जत के लिए रखा। इज्जत सबको पसंद होती है, कभी इंशाल्लाह इज्जत पे बात करेंगे। उमूमन जिसको हम इज्जत समझते हैं वो इज्जत नहीं होती, बहुत से मौके पे हम जिल्लत को इज्जत समझते हैं, ये हमारी गलत फहमी है। एक दूसरी चीज ये कि इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है, और जब इज्जत अल्लाह देता है तो फिर उसी रास्ते से देगा जो रास्ते अल्लाह ने बताए, किसी और के रास्ते से इज्जत नहीं मिलेगी। जिहाद इस्लाम के लिए इज्जत है, इससे इज्जत हासिल होती है। यानी अगर मुसलमान जिहाद के रास्ते को छोड़ देगा तो जलील हो जाएगा। इंशाल्लाह वजाहत करेंगे और जहां तक मुमकिन हुआ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में इसकी वजाहत की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख लें कि वो मुसलमान कि जो जिहाद को छोड़े बैठे हैं उनसे जलील कोई नहीं दुनिया में इस वक्त, और जो वाकई जिहाद, वो जिहाद नहीं कि जो अमेरिका और इज़राइल का बनाया हुआ है, वाकई जिहाद अल्लाह की राह में कर रहे हैं उनसे ज़्यादा साहिब इज़्ज़त कोई नहीं इस वक्त दुनिया में। अब इसके बाद वजाहत की क्या ज़रूरत है, समझ में आ रही सारी बात। सबसे पहले आइए जिहाद के मानी पे थोड़ी सी बात करते हैं। जिहाद कहते हैं किसको? जिहाद यानी कोशिश, बुनियादी एतबार से किसी भी अच्छे काम के लिए कोशिश करना, इसको जिहाद कहा जाता है। कोई भी अच्छा काम, एजुकेशन के लिए कोशिश करना, लोगों में सुधार के लिए कोशिश करना,
اصلاح کے لیے کوشش کرنا، اور کسی بھی طرح سے، ضروری نہیں کہ اسلحے سے ہی

अच्छा वाला रखो और जो पसंद नहीं है वो बांटो। ये तो सही मानों में कुर्बानी की इब्तिदा भी नहीं है। अल्लाह की राह में क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं। दरवाकई ये कुर्बानी जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल के तौहीद की अलामत है। हम बकरा कुर्बान करते हैं, जनाब इब्राहिम ने बकरा नहीं कुर्बान किया था, जनाब इब्राहिम ने अपने लड़के को कुर्बान किया था। हम देखें कि क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं अपने लड़के को कुर्बान? पहुंचने की कोशिश करें। तौहीद यहां पालने वाले तेरे में थोड़ा सा मसला होता है तो हम भूल जाते हैं। यानी यहां से हमको सबक मिलना चाहिए कि जब भी किसी रास्ते में आगे बढ़ें तो हम ये देखें कि यहां पे हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। इब्राहिम से अल्लाह ने इस्माइल की कुर्बानी चाही थी, इस्माइल से अल्लाह ने जान चाही थी, दोनों बाप बेटे मुत्तफिक थे कि दे दो, सोचा भी नहीं। यह है कि नहीं हकीकत? सिर्फ बकरे के गोश्त और खून में महदूद ना रह जाएगा, अच्छे उसकी अहमियत है, वो अपनी जगह पे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे जो फलसफा है ये उसी मारफत है। 9 को इतनी मारफत पैदा हो जाए कि 10 को अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाए। मारफत की बुनियाद पे अल्लाह की राह में क्या कुर्बान कर सकते हैं। जहां तक कुर्बानी दे सकते हैं वहां तक मारफत है, तौहीद है। जहां से कुर्बानी नहीं दे सकते हैं वही हमारी जिंदगी का बुत है, वही जिहालत है। इंशाल्लाह इस कुर्बानी पे मजीद गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अगली मुनासिबत 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कि शहादत की तारीख है। एक इमाम का कौल पेश करते हैं तबरुकन। इमाम फरमाते हैं अज़्ज़ुल्म सलासा, मशहूर कौल है, आपने इससे पहले सुना होगा, हमने भी एक मरतबा शहादत की मजलिस में पेश किया। जुल्म 3 तरह के होते हैं, जुल्म ला यग़फिरुल्लाह, एक जुल्म वो है जिसको अल्लाह नहीं बख्शता, माफ़ नहीं करता। जुल्म यग़फिरुल्लाह, एक जुल्म वो है कि जिसको अल्लाह माफ़ कर देता है, बता ऐसा नहीं कि करते जाए नहीं है, इम्कान है उसके माफ़ होने के। जुल्म ला यदउल्लाह, और एक जुल्म है कि जिसके बारे में सवाल होगा। तीनों जुल्म की इमाम वजाहत करते हैं। अम्मा जुल्मुल्लज़ी ला यग़फिरुल्लाह फश्शिरकु बिल्लाह, वो जुल्म की जिसको अल्लाह नहीं माफ़ करेगा वो अल्लाह का शरीक करार देना है, शिर्क। शिर्क को अल्लाह किसी अदबार से माफ नहीं कर सकता। फअम्मा ज़ुल्मुल्लज़ी यग़फिरुल्लाह फ़ज़ुल्मु रजुल नफ्सहु फ़ीमा बैनहु व बैनल्लाह, वो जुल्म की जिसको अल्लाह माफ कर देगा। फिर हम ऐसा कर रहे हैं माफ कर देगा मतलब ही नहीं कि हम करते जाएं माफ करता जाएगा, इम्कानात हैं उसके, रास्ते हैं, तरीके। ये जुल्म वो जुल्म है कि जो इंसान अल्लाह के और अपने बीच में खुद पे जुल्म करता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुनाह, ये गुनाह जुल्म है, अपने नफ्स पे जुल्म, इसके माफी है ना, इस्तग़फ़ार कर लें, इंसान शर्मिंदा हो जाए, फलां हो फलां हो, ये वो जुल्म है कि जिसके बारे में माफी का रास्ता है। तीसरा जुल्म फअम्मा ज़ुल्मुल्लज़ी ला यदउल्लाह फलमदायनहु बैनल इबाद, वो जुल्म कि जिसके बारे में सवाल होगा वो लोगों के हुकूक है। अगर किसी का हक हमने ज़ाया कर दिया, किसी पे जुल्म किया है, ज़्यादती की, इसे कहते हैं हक़ुल इबाद। और आपको मालूम है किसके लिए? जब तक वो नहीं माफ़ करेगा कोई नहीं माफ़ करेगा, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा, हम नहीं माफ़ करेगा, उससे पहले लेके। तो ये नहीं कह सकते कि जुल्म माफ़ हो जाएगा या नहीं, नहीं, सवाल हो गया इसके बारे में, अल्लाह सवाल। हो सकता है कि एक इंसान ने गुनाह किया है और दुनिया में वाकई उसके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाए कि कमाल इखलास से वो मगफरत तलब करे, अल्लाह से तौबा करे, गिड़गिड़ा इस्तग़फ़ार करे, तो मुमकिन है कि बाज़ ऐसे गुनाह है कि जिसका आखिरत में सवाल चूंकि मिट गए, नामे अमाल से मिट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो हक़ुन्नास है इसका रोज़ महशर सवाल होगा। और ये हदीस इस बात को वाज़ह करती है कि इस्लाम में समाजी ज़िंदगी कितनी है।

दिया था कि जो एक्टिविटीज़ हैं ज़ायनिज़्म के, जो हालात हैं इसराइल के, वो बता रहे हैं कि बहुत कुछ इमीडिएट में आगे के हालात को देखते हुए शिफ्ट, काफ़ी पहले का ये एनालिसिस है मौजूद और वो चीज़ निगाहों से दिख रही, वो हमारे सामने है। ईरान में एक कमेटी है जामे मुदरसिन, इससे पहले भी जिक्र हुआ है, जामे मुदरसिन हौज़े इल्मिया क़ुम के जो असातीज़ हैं उनकी कमेटी है, उसने बहरैन, कुवैत, अमारात और जो दूसरी अरब रियासतें हैं, अरब ममालिक हैं, उसमें शियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और उलमाए दीन के ख़िलाफ़ जो भी इकदामात किए जा रहे हैं उसकी शदीद मजम्मत की।

इसको भी भागना कहते हैं। जैसे वो भगोड़ है वैसे ये भी भगोड़ है। ठीक है कि वो माशरे के एतबार से किस कैटेगरी में हो एक अलग बात है। तो जिहाद कहते हैं हक की राह में अच्छाई के लिए कोशिश करना। उन्हीं कोशिशों में वो एक कोशिश ये है कि जब माशरा ख़राब हो जाए, माशरा फासिद हो जाए, माशरा बिगड़ जाए, तो ऐसी सूरत में इंसान ये कोशिश करे कि उसमें इस्लाह पैदा हो जाए। जब ये बात इतनी आखिर तक पहुंच जाती है कि असलहे के बगैर काम नहीं चल सकता है, तो फिर असलहे को उठाना भी जिहाद। अमूमन जब जिहाद कहा जाता है तो

इंसान ये कोशिश करे कि उसमें इस्लाह पैदा हो जाए। जब ये बात इतनी आखिर तक पहुंच जाती है कि असलहे के बगैर काम नहीं चल सकता है, तो फिर असलहे को असलहा उठाना भी जिहाद। अमूमन जब जिहाद कहा जाता है तो जिहाद से मुराद यही होता है, असलहा उठाना, जंग करना। लेकिन इतना आसान नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में क्या इरशाद फरमाया उस जंग के लिए, जो मैदान करबला में यजीद की फौज से जंग कर रहे थे? आप फरमाते न दाई न दाई कद रखनी बेन स्नतिन बेन सिल्लत वज़िल्ला हयात में नज़िल। इस नामुराद के बेटे नामुराद ने हमको उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया, जिसका एक रास्ता असलहे का जंग का है और एक जिल्ला। अल्लाह हमको जिल्ला से बचा। यानी अख्तियारी हालत में सीरत आप देखें, जब भी कोई सहाबी सामने आया, कोई ऐसा हाल यानी कोई ऐसी चीज़ देखी कि जो उसको नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई, या ऐसा मौका देखा कि जो हमले के लिए अच्छा है, कहा मौला सिर्फ इजाज़त दीजिए। अलबत्ता ये साहब भी थे, हमला करना था तो बगैर इजाज़त की किया नहीं। आज के दौर के होते तो बगैर इजाज़त के हमला भी करते और आके एहसान भी जताते हैं कि हमने आप पे एहसान किया। वह आए थे और आके इजाज़त मांग रहे थे, मौला इजाज़त दें। इमाम ने हमेशा ये कहा कि नहीं, आगाज़ हम नहीं करेंगे जिहाद, उसके शरायत हैं, जिहाद की शर्तें हैं। फिर अगर जंग शुरू हो जाने के बाद की भी शर्तें हैं, जो सामने तुमसे लड़ रहा है उसी को मारो, हर एक को नहीं मार सकते हो तुम। जैसे आज के ज़माने में कहते हैं सिविलियंस को नहीं मार सकते हो। पेड़ पौधे, खेती, बाग, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ज़ाया नहीं कर सकते हो। पानी के सोर्सेज ज़ाया नहीं कर सकते हो। बूढ़ों को नहीं मार सकते, औरतों बच्चों को नहीं मार सकते, उसके भी शरायत हैं। ये पूरी है। इसके मुकाबले में अमेरिका और इसराइल इस्तिकबारी और इस्तेमारी ताकत, इस्तेमारी में फिर ये आ गया ब्रिटिश, इन्होंने जिहाद की एक शक्ल को पेश करने की, चूँकि इस्लाम की इज्जत है ना, वो नहीं चाहते कि ये इज्जत बाकी रहे, लिहाजा जिहाद की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश की। और जिसके लिए मुख्तलिफ अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रोहों को, जिसमें आखिर में ISIS और फिर उसके बाद उससे टूट के, जो उससे पहले भी बहुत सारे सामने क्या करते थे, जाके सीधे हमला करते थे। खूब, ये जिहाद नहीं है, ये आतंकवाद है। और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक भी नहीं था। अभी सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। इसका ताल्लुक इसराइल से था, इसका ताल्लुक अमेरिका से था। आज जो एक जिहाद को लेके इमेज बनाई जा रही है कि जिहाद यानी बेगुनाहों पे जुल्म फलां फलां फलां, ये जो भी इमेज है ये इस्लाम वाला जिहाद नहीं है, ये इसराइल का आतंकवाद है कि जिसको वो इस्लाम के जिहाद के नाम पे पेश कर रहा है। स्कूल में मारना, बच्चों को मारना, छोटे बच्चों को मारना, लोगों को भूखा मारना, लोगों को बगैर दवाओं के मार देना, पूरे फिलिस्तीन पे खाने पीने की चीज़ों को रोक देना, पानी के सोर्सेस को ज़ाया कर देना, ये इसराइल का काम है, आतंकवाद है। मीनाब जैसे स्कूल पे मार देना, 168 लड़कियों को, बच्चों को, बेगुनाहों को कत्ल कर देना, ये इसराइल का जिहाद है। इसको लाया ही इसीलिए गया था कि वो जिहाद की जो इस्लाम की इज्जत है उसको इस्लामोफोबिया बना के पेश कर दिया जाए, ये मकसद था। जाहिर सी बात है कि उनके हाथों पे बिके हुए जो मीडिया के चैनल्स थे उन्होंने उसको बढ़ावा दिया और काफ़ी हद तक लोगों ने माना भी उसको, ऐसा नहीं नहीं माना। लेकिन हमारा लाखों सलाम हो मुसलमानों की सेंट्रलाइज लीडरशिप पे कि जिसकी हिकमत अमली ने इन सारे आतंकवाद के चेहरों से पर्दा हटा दिया। आज दुनिया पहचान गई है इसराइल और अमेरिका सिर्फ आतंकवाद के लिए लड़ रहे हैं और ईरान इस्लाह के लिए लड़ रहा है। हमने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि ईरान की ये जंग अपनी ज़ात के लिए नहीं है, अपने ज़ाती मुनाफे के लिए नहीं है, इस्लाह के लिए। इसको जिहाद कहा जाता है, वो भी डिफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव। हमला नहीं करोगे तो हम, बावजूद ये कि इतना बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, लेकिन अगर हमला नहीं होगा तो हम खुद से नहीं मारेंगे। आसान नहीं।

अपने आप को रोक लेना इतना, इसके लिए ज्यादा शुजात, मारने के लिए इतनी शुजात थोड़ी चाहिए होती है, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेने के लिए ज्यादा शुजात चाहिए होती है। तो ये जिहाद की वह शक्ल है कि जिसको दुनिया तोड़ना चाह रही है, बिगाड़ना चाह रही है, दरवाजे इस्लाम से और मुसलमानों से जिहाद की शक्ल को छीनना चाह रही है। हम जिहाद के मानी और मफहूम को पहचाने, जिहाद किसी पर जुल्म का नाम नहीं है, और हो भी कैसे सकता होता है, अदल के लिए जुल्म करके अदल के रास्ते में कैसे इंसान बढ़ सकता है, मुमकिन ही नहीं है। जिहाद किसी पे ज्यादती का नाम नहीं है, जिहाद किसी पे तजावुज़ का नाम नहीं है, जिहाद अदल व इंसाफ को बाकी रखने का नाम है, अदल व इंसाफ को राइज करने का नाम है, लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ को अमली एतबार से लाने का नाम जिहाद इसको कहते हैं, यानी कोशिश, एक अच्छाई की तरफ कोशिश, एक खूबसूरत कोशिश। लिहाजा अगर मुसलमान दुश्मनों के जो बहाने हैं, जो दुश्मनों के हीले हैं, जो दुश्मनों की साजिश हैं, जो दुश्मनों के हमलात हैं, जो दुश्मनों के तहाजुम हैं, उनके ऊपर अटैक है मुसलमानों पे, अगर उसको नहीं पहचानेगा मुसलमान या उस पर जवाब नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान की इज्जत छिनती रहेगी। आज मुख्तलिफ तरह के हमले, यह असलह का हमला तो बाद में, हमने इससे पहले किसी मौके पर अर्ज किया था कि दरवाके अमेरिका और इसराइल स्ट्रेटेजी वाली जंग हार चुके हैं, पॉलिटिक्स के अदबार से हार चुके हैं। जिहाद सिर्फ असलहे की जंग नहीं है, जिस रास्ते से दुश्मन आप पे अटैक कर रहा है उस रास्ते से उसको जवाब देना, ये जिहाद है। अगर दुश्मन सोशल मीडिया से अटैक कर रहा है तो सोशल मीडिया से जवाब दीजिए, दुश्मन इल्मी मैदान में अटैक कर रहा है तो आप इल्मी मैदान में जवाब दीजिए, दुश्मन कल्चरल अटैक कर रहा है तो आप कल्चरल जवाब दीजिए, दुश्मन फिक्री अटैक कर रहा है तो आप फिक्री जवाब दीजिए, यानी जवाब अपना डिफेंस, अपने आप को बचाना। जवाब का मतलब ये नहीं है, बाज़ औक़ात होता है कि उन्होंने इस्लाम पे आके इल्ज़ाम लगाया बुरा भला, अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरती है भी, कितनी जगहों पे कितने बड़े पैमाने पे मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ तोहमत लगाई गई और तजावुज़ मुसलमानों ने, मिसाल के तौर पर कितनी मतवा कुरान जलाया गया, मुसलमानों में तो हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं जाहिर, हर तरह के, किसी ने बढ़ के उन जलाने वालों की किताब को नहीं जलाया, क्योंकि मालूम है कि इस्लाम के कानून के खिलाफ है। हम किसी के मजहब की भी तौहीन नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उस गलती के मुकाबले में एहतजाज में हम गलती नहीं कर सकते, गलती से गलती को सुधार नहीं होता है, सुधार के लिए सही रास्ते की जरूरत है। लिहाजा जिस रास्ते का मतलब ये, यानी अगर कुरान जलाया जा रहा है तो हमारा उस रास्ते का मतलब यह कि हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करें, भाई जिस कुरान को जला रहा है देखो ये कुरान, ये आयतुल्ला रईसी जिनकी अभी शहादत की तारीख गुजरी है, उन्होंने जाके दुनिया के एक बहुत अजीम मकाम, अलबत्ता अजीम मरतबे के अतबार से नहीं, जहाँ पे लोग जमा होते हैं, वहां पे जाके कुरान को पेश करके बताया कि जो तुम इसको जला रहे हो, ये सुनी होगी आपने वो स्पीच, हतमन सुनी हो, फिर सुनिएगा उसको, ये है, ये उसका जवाब है, उसका जवाब ये नहीं है, ये मिजाज जिहाद है। पहचानिए कि जो बाउंड्रीज हैं उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। दुनिया में जिहाद किसका नाम है? बाउंड्री को क्रॉस करने, ताकत का इजहार होता है इसी पे, ये गलत है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लिहाजा जिहाद का मतलब यह कि इंसान अपना दिफा करे, आज के जमाने में सिर्फ इतना, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि इंसान, और ये नेचुरल चीज़ है बल्कि बुनियादी चीज़ है, हमारा बेसिक, हम सब का बेसिक है, सब का, हत्ता जानवर को के अंदर भी इतना शऊर होता है, अगर आप जानवर पे हमला कीजिए तो वो भी अपना दिफा करता है। जिहाद का मतलब यह कि इंसान अपना दिफा करे, जिस एतबार से इल्मी फिक्री कल्चरल पॉलिटिक जैसे भी आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आपके पास ऐसी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि आप उसका दिफा करें। अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता है, असलहों की जिहाद की तो फिलहाल जरूरत नहीं, बात होगी, बाकी जो जिहाद हैं उसके लिए ऐसे

इतनी मारफत पैदा हो जाए कि 10 को अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाए। मारफत की बुनियाद पे अल्लाह की राह में क्या कुर्बान कर सकते हैं, जहां तक कुर्बानी दे सकते हैं वहां तक मारफत है, तौहीद है, जहां से कुर्बानी नहीं दे सकते हैं वही हमारी जिंदगी का बुत है, वही जिहालत है। इंशाल्लाह इस कुर्बानी पे मजीद गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अगली मुनासिबत पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के शहादत की तारीख है। एक इमाम का कौल पेश करते हैं तबरुकन। इमाम फरमाते हैं अज़्ज़ुल्म सलासा, मशहूर कौल है, आपने इससे पहले सुना होगा, हमने भी एक मरतबा शहादत की मजलिस में पेश किया। जुल्म तीन तरह के होते हैं, जुल्मोन ला यग़फिरुल्लाह, एक जुल्म वो है जिसको अल्लाह नहीं बख्शता, माफ़ नहीं करता, जुल्मोन यग़फिरुल्लाह, एक जुल्म वो है कि जिसको अल्लाह माफ़ कर देता है, अलबत्ता ऐसा नहीं कि करते जाए नहीं है, इम्कान है उसके माफ़ होने के। जुल्मोन ला यदउल्लाह, और एक जुल्म है कि जिसके बारे में सवाल हो। तीनों जुल्म की इमाम वजाहत करते हैं। शिर्को बिल्लाह, वो जुल्म की जिसको अल्लाह नहीं माफ करेगा वो अल्लाह का शरीक करार देना है, शिर्क, शिर्क को अल्लाह किसी अदबा से माफ नहीं कर सकता। फम्मी यफ़िरफ़ीमा, वो जुल्म की जिसको अल्लाह माफ कर देगा, फिर हम ऐसा कर रहे हैं माफ कर देगा मतलब ही नहीं कि हम करते जाएं माफ करता जाएगा, इम्कानात हैं उसके, रास्ते हैं, तरीके। ये जुल्म वो जुल्म है कि जो इंसान अल्लाह के और अपने बीच में खुद पे जुल्म करता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुनाह, ये गुनाह जुल्म है, अपने नफ्स पे जुल्म, इसके माफी है ना, इस्तग़फार कर लें और इंसान शर्मिंदा हो जाए, फलां हो फलां हो, ये वो जुल्म है कि जिसके बारे में माफी का रास्ता है। तीसरा जुल्म, अम्मा ज़ुल्मुल्लज़ी ला यदउल्लाह फलमदायनहु बैनल इबाद, वो जुल्म कि जिसके बारे में सवाल होगा वो लोगों के हुकूक है, अगर किसी का हक हमने जाया कर दिया, किसी पे जुल्म किया है, ज्यादती की, इसे कहते हैं हक़ुल इबाद। और आपको मालूम है किसके लिए, जब तक वो नहीं माफ करेगा कोई नहीं माफ करेगा, अल्लाह नहीं माफ करेगा, हम नहीं माफ करेंगे, उससे पहले लेके तो ये नहीं कह सकते कि जुल्म माफ हो जाएगा या नहीं, नहीं, सवाल हो गया इसके बारे में, अल्लाह सवाल हो सकता है कि एक इंसान ने गुनाह किया है और दुनिया में वाकई उसके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाए कि कमाल इखलास से वो मगफरत तलब करे, अल्लाह से तौबा करे, गिड़गिड़ाए, इस्तग़फार करे, तो मुमकिन है कि बाज़ ऐसे गुनाह है कि जिसका आखिरत में सवाल चूंकि मिट गए, नामे अमाल से मिट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन यह जो हक़ उन्नास है इसका रोज़ महशर सवाल होगा। और ये हदीस इस बात को वाज़े करती है कि इस्लाम में समाजी ज़िंदगी कितनी अहम है, सोशल लाइफ कितनी अहम, लोगों के हुकूक़ की रियायत। आज सबसे पहले अगर इंसान के पास थोड़ा सा अख्तियार आता है, पावर आता है, तो अपने उस पावर की कामयाबी और उसको जाहिर करने का सबसे पहला रास्ता ये होता है कि दूसरों पे जुल्म करें, दूसरों का इस्तेहसाल करें। कैसे साबित होगा हमारे पास ताकत है, बदतरीन रास्ता ये, और इसकी सजा इंसान दुनिया में भी देखता है और आखिरत में भी देखता है। अगली मुनासिबत सरकार सैयदुल शुहदा के सफ़ी हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की तारीख शहादत। कूफे के मामलात को देखते हुए इमाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब किया था। जनाब मुस्लिम बिन अकील इमाम ने किस लिए भेजा था, वहाँ पे हालात को भी फेस करना था, लोग बैत कर ले तो हुकूमत भी करनी थी, उनकी मजहबी रहनुमाई भी करनी थी, सारे काम करने थे। इमाम की निगाह में मुस्लिम बिन अकील उस ज़ात का नाम है कि जो पॉलिटिकल एतबार से हुकूमत भी कर सकते थे, मजहबी एतबार से लोगों के मजहबी जवाबात भी दे सकते थे, उनके

सभी जो जरूरियात थी उनको पूरा कर सकते थे। सियासी एतबार से वहाँ के हालात को फेस भी कर, बहुत कुछ सलाहियत थी जनाब मुस्लिम दुनिया की। और जो पॉलिसी या जो साजिश की गई थी जनाब मुस्लिम बिन अकील के लिए, और जिस बेदर्दी से उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको कत्ल, अगर इतने बड़े पैमाने पर ना होते तो मुस्लिम उस जात का नाम नहीं है कि जिनको कोई इतनी आसानी से पाले। बहुत अजीम शख्सियत थी जनाब मुस्लिम बिन अकील। खुब यह इनके अलावा जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक मुनासिबत जो पिछले हफ्ते गुजर गई, आयतुल्लाह रईसी की शहादत बहुत ही एक अजीम सानिहा था। ये वो ज़ात है कि जिसने अपनी ज़ात अपने आप को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया था, और इसी के साथ साथ इनके लकब में है खादिम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अखलाक का बेहतरीन नमूना थे, अदालत का बेहतरीन नमूना थे, विलायत महवरी यानी अपने आप को विलायत से सेंट्रलाइज करने के लिए बेहतरीन नमूने अमल थे। किस चीज ने आयतुल्ला रईसी को रईसी बनाया? रिश्वत आगे रईसी जीत के आए हैं, बातिल चेहरों पे हवाइयां उड़ रही थी। सिर्फ उनका ओहदे पे आना ही बातिल अपनी शिकस्त महसूस कर रहा था। कोई भी इंसान अपने सिफात से बड़ा बनता है, ये सिफात थे उनके अंदर। उन्होंने अपनी अनथक कोशिश, जिद्दोजहद, काविशों से वो खिदमतें अंजाम दी कि शहादत के बाद उनका लकब ही शहीद खिदमत गुजार, शहीद खिदमत दिया गया। बहुत सारी ऐसी उनकी खिदमतें हैं कि जो पूरी आलम इंसानियत के लिए नमूना अमल बन सकती है, और लोग उसको लेके अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मौजूदा हालात में है वो अमारात में दिन ब दिन मुसलमान बिलखसूस तशैयों के लिए जुल्म में इजाफा होता जा रहा है। अभी उन्होंने ईरानी बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया, जिसमें जिसका असर तकरीबन 2300 बच्चों पे पड़ा। ये जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं उनकी तरफ से, दरवाक़े ये एक सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल इंतकाम। ये पॉलिटिकल इंतकाम इस बात की दलील है कि हम ये पहचानें कि ये लोग किस मकाम पे हैं और कितना पस्त हो चुके हैं। एक बहुत अच्छा किसी का बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है, उसको पेश करके हम आगे बढ़ते हैं कि दरवाक़े इमीरेट अमलन प्रैक्टिकली एतबार से अरबी जबान बोलने वाली ज़ायनिज़्म हुकूमत है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसी की कॉपी बनती जा रही है, तब्दील हो चुका है। अलबत्ता जो लोग एनालाइज कर रहे थे उन्होंने काफ़ी पहले कह दिया था कि जो एक्टिविटीज़ हैं ज़ायनिज़्म के, जो हालात हैं इसराइल के, वो बता रहे हैं कि बहुत कुछ इमीरेट में आगे के हालात को देखते हुए शिफ्ट, काफ़ी पहले का ये एनालिसिस है मौजूद, और वो चीज़ निगाहों से दिख रही, वो हमारे सामने है। ईरान में एक कमेटी है जामे मुदरसीन, इससे पहले भी जिक्र हुआ है, जामे मुदरसीन हौज़े इल्मिया कुम के जो असातीज़ हैं उनकी कमेटी है। उसने बहरीन, कुवैत, अमारात और जो दूसरी अरब रियासतें हैं, अरब ममालिक हैं, उसमें शियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और उलमाए दीन के ख़िलाफ़ जो भी इकदामात किए जा रहे हैं उसकी शदीद मजम्मत की है, और उन हुक्मरानों के पुरानी तालीमात से इस कदर दूरी पे गहरे अफसोस का इजहार किया। सर इसलिए हो रहा है, इंसान अल्लाह के अगेंस्ट में कब जाता है जब उसके पास कुरानी मालूमात नहीं होती है। अपने को सुधारने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जाएं हौज़ इल्मिया में और 10 साल, नहीं, ये कुरान जो हमारे सामने इसको पढ़ लें, वहाँ जाके भी यही पढ़ना होता है, बस यह कि वो तफसील होती, ज़्यादा गहराई होती है। बेस यही है,

ये जो हम जुल्म करते हैं, गुनाह करते हैं और इस्तेहसाल फला, इसीलिए कि हम कुरान से दूर हैं। ये जो इतने बड़े पैमाने पे अरब मुमालिक जुल्म कर रहे हैं, बेगैरती में मुब्तला है, इसकी वजह यह है कि ये कुरान से दूर हैं, कुरानी तालीमात से दूर हैं। जामे महमूद अलसी ने इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इज़हार करते हुए ताकीद की है कि दुनिया इस्लाम की तमाम सलाहियतें इस्तिकबार और ग़ासिब ज़ायनिज़्म हुकूमत को रोकने और इस्तिकबार की दुनिया को पीछे ढकेलने और खित्ते से उनके तसल्लुत को ख़त्म करने में काम आनी चाहिए और यह एक ईमानी जिम्मेदारी है। ये इस्लाम का वो सामाजिक पहलू है जिसको लोग आसानी से नहीं समझ पाते, और दरवाकई यही वो चीज़ है कि जो कौमी एतबार से किसी भी कौम की नाकामी का सबब बनती है। जब तक कौम के अफराद सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाएंगे उस वक्त तक कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी हमारी कि हम सामाजिक पहलू को समझें। आखिर में बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं, पालने वाले हम सबको आमाले सालिहा की तौफीक अता, बड़े आमाले कबीहा से महफूज रखे, पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श, बड़े हमारे मरहूमीन को बख्श, पालने वाले इस्लाम व मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, बड़े दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद, पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी रखे, बड़े रहबर व मराज को तूल उम्र नायत, पालने वाले हमारे इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शरीक होने की तौफीक, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد